0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
2: विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जां स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटॉर्नीज, बच्चियां लई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 9052328700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
1: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तुहाडा कार, वैन, ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसे जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तुहाडा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जां अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां वी आनाकानी कर रहियां हन। तुसी सोच रहे हो करिए तां हुण की करिए, चीचियां ना वटो। बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ां दे नाल शरीरक दर्दां दी मलम, डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800-567-HURT-4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010। डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर।
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704 pe.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist.
3: HK Movers.
6: HK Movers.
1: Noodkuru ke जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारें दे विचों प्रोफेशनल पेंटर द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग, जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिल्कुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-833-5960 6478335960। गिल हाउस पेंटिंग। लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम, एनी टाइम होम रेनोवेशन। सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम, प्लम्बिंग, किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमां नूं समय ते करवाउण लई चेती रखो। एनी टाइम होम रेनोवेशन्स। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 647-271-1735 647-271-1735। एनी टाइम होम रेनोवेशन।
7: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नूं मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मिठाइयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जिथों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-6464।
8: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
6: ਓ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਡ ਲੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਫੇਰ ਖੜ ਗਿਆ ਯਾਰ।
8: ਓ ਭਰਾਵਾ, ਹੈਪੀ ਬੜਿਆਲ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਢੇਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ।
6: ਸੱਚੀ?
8: ਓ ਮੁੱਚੀ,
6: ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬੜਿਆਲ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਢੇਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਰਿਪੇਅਰ, ਡੀਪੀਐਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ A to Z ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ।
8: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।
6: ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਾ।
8: ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾ, 1 Good Mark Place, Etobicoke, Unit 5,
6: ਕਾਲ 6477067 9257 6477067 9257।
9: ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਫੂਕੋ ਬੱਚੇ ਤੇ।
10: 6474886000।
9: ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ?
10: ਬੱਚਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
9: ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ?
10: ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ।
11: ਹਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਮ NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ। ਕਾਲ 6478886000 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ NRIMB.com।

0: अब तो ये
1: You're listening to CNN Toronto Chawla News Network Toronto
2: CJ Mark 1320 AM frequency radio program TV program Agla Punjab mein aapki host hain dost Anju Sikka peshe khidmat hai aapki nazar mein aaj ke mukhya samachar sabse pehle aapka tapman right now 22 degrees centigrade hai kal ka high 26 lowest 15 rahega And a cloudy day. खबरों की सुर्खियां आप सबकी खिदमत में सुपर चार्ज एल नीनो जी हाँ जिनको पता होगा कि काफी गर्मी लेके आता है कनाडा का विंटर जो है इस वक्त लगता है छुट्टी लेगा क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने कहा है कि इस बार सर्दी जो इतनी खासी नहीं होगी और कुछ गर्म वातावरण ही रहेगा डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू करे टारगेट करना कनाडा को ऑन द लेबर डे काउंटर टैरिफ किक इन होगा कल उसके पहले उन्होंने कहा है कि बम्बार्डियर की जो अगर मेकिंग वहां पर नहीं होती है अमेरिका में तो उसका ऊपर टैरिफ्स बहुत ज्यादा लगेंगे और साथ ही साथ उनके ट्रूथ सोशल मीडिया के ऊपर यूएस का मैप दिख रहा है जो कि कनाडा को पूरा कवर कर रहा है कनाडा मेक्सिको कैरेबियन सेंट्रल अमेरिका आइसलैंड और ग्रीसलैंड को और पूरा उस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा गया है और वंस अगेन नो मोर सेलिंग बम्बार्डियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इसके साथ साथ आई विल किल यू एक ट्रक ड्राइवर को जो है वो ड्रॉप ऑफ किया उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने किसी का गर्दन दबाकर गला घोटकर एक व्यक्ति को वेयर हाउस में मारने की कोशिश की थी ये कनेडियन सिटी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है स्टील हम सभी जानते हैं हैमिल्टन वहां पे स्टील का प्रोडक्शन है उनकी प्लान कैसे है ट्रेड वॉर को सर्वाइव करने के लिए जी हां यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि 50% टैरिफ ऑलरेडी जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कनाडा जो है इम्पोज करेगी डॉलर टू डॉलर टैरिफ इस वक्त काफी ज्यादा लड़ाई जो है ट्रेड वॉर की आगे बढ़ चुकी है अमेरिका और कनाडा के दरमियान काउंटर टैरिफ होगा स्टील के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी और इसके साथ ही साथ क्यों जो है अमेरिका की इम्पोर्टेंट हफ्ता चल रहा है कनाडा यूएस ट्रेड वॉर के लिए और इसमें प्रिडिक्ट किया जा रहा है इस हफ्ते कि किस तरह से अगर कोई भी डील नहीं जो कि ऐसा संभावित है कि नहीं होगी ट्रेड वॉर अमेरिका और ऑटवा के दरमियान शुरू हो गया था अगस्त 21 से 50% यूएस टैरिफ ऑन बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ कैनेडियन प्रोजेक्ट्स लगेंगे रिस्पांस ने ऑटवा ने अनाउंस किया डॉलर फॉर डॉलर काउंटर टैरिफ जो कि करीब करीब 700 अमेरिकन इम्पोर्ट्स के ऊपर होगा जिसकी कीमत 27.6 बिलियन डॉलर होगी जो कि प्रभावित हो जाएगा रात के 12 बजे से मंगलवार की रात को चार्ल्स ने किंग प्रिंस चार्ल्स ने कंफर्म किया कि हैरी और मेगन जो है वो नॉन वर्किंग रॉयल्स रहेंगे क्योंकि वापस वो यूके में पहुंच रहे हैं इसके साथ ही 7 साल की एक बच्ची को अस्पताल भर्ती करा गया कोलिजन और टैक्सी ड्राइवर के साथ इन एटोबिको एक औरत को अरेस्ट किया गया अटेम्प्टेड मर्डर फॉलोइंग स्टैबिंग मिसिसागा में हुई थी इसके साथ साथ ऑन्टेरियो के एजुकेशन सिस्टम में इस फॉल में बदलाव आ रहा है बच्चे जो है स्कूल में बैक टू स्कूल जाने को है सैनिटाइज टेस्टिंग अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन के ऊपर तवज्जो इसके साथ ग्रेड 10 फाइनेंशियल में लिटरेसी टेस्ट होगा किंडरगार्टन करिकुलम में ओवरहॉल काफी चेंजेस हैं नया हिस्ट्री कंटेंट्स बढ़ाए जाएंगे न्यू स्कूल बोर्ड ऑफिसेस हैं टीचर्स को मिलेंगे $750 एनुअल स्कूल की सप्लाईज के लिए और नया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म 35 नए एक्सपेंडेड स्कूल्स बनने जा रहे हैं गो ट्रांसिट एंड अप एक्सप्रेस जो है अगर आप टिकट बैठे हैं उसका इस्तेमाल करें और टिकट नहीं खरीदा तो इसमें फाइन में वृद्धि हो जाएगी और बैक टू स्कूल सीजन है और कहा जा रहा है स्कूल्स के आसपास जो है पुशअप किया जा रहा है रिड ऑफ कार्स ड्रॉप ऑफ और पिकअप के लिए इसका मतलब है कि स्कूल के सेफ्टी जोन में कारों की गिनती कम होगी और डाउनटाउन के ओशवा फ्यूनरल होम में काफी ज्यादा जो है पूरा का पूरा वो ध्वस्त हो चुका है वहां पर लगी आग की वजह से भीषण आग जो कि कंट्रोल में नहीं हुई थी ये था खबरों का खास बुलेटिन आप सबकी खिदमत में देख रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब सीजीमा 1320 AM फ्रीक्वेंसी पर
3: जुड़नगे कनेडा तो पंजाब दे ता विचार चर्चा होवेगी साढ़े ते मिंटो गुरसरिये दे विचकार लो जी सुनो फिर था सोटा मिंटो गुरसरिये दा
4: दोस्तों नोट करो कि 13 सितंबर दिन एतवार नू माल्टन गुरद्वारा साहब विखे गुरु ग्रंथ साहब जी दे पहले आगमन दिवस के संदर्भ दे विच नगर कीर्तन हो रहे ने नगर कीर्तन दे विच आपां परिवार समेत पहुंच के गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करनी ने गुरद्वारा साहब दा नंबर 905-671-4290 सानू एक नवे बिजनेस ने ज्वाइन किया जिदे बारे तुहानू दसणगे हांजी जी
2: जी एक बहुत ही वड्डी कंपनी जिथे कि प्रोफेशनल टीम उन्हां दी काम करदी जॉन ऑरेकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंप्लीट एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन अते मेसनरी वर्क तुसी कराना चाहुंदे हैगे हो और इंटरलॉकिंग पेविंग चिमनी मोटर रिपेयर्स हो गए पैटियो स्टेप्स वॉकवेज फेंसिंग एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन स्टको एंड पार्जिंग रिटेनिंग वॉल्स बहुत ही हाई एंड काम हैगा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਫਰੰਟਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਇਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ 416-474-6836, ਦੈਟਸ 416-474-6836, ਓਰੇਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ।
4: ਏਸ਼ੀਆ ਗਾਰਡਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਬਿਨ ਅਜ਼ਲਿੰਟ ਦੇ ਚੌੜੇ ਬਿਆਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਾ ਗਾਰਡਨ ਅੰਡਰ ਲੀਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 416-749-8333। ਕੈਲਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਗ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਗ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਮਿਰਚਾਂ, ਘੀਆ, ਮਟਰ, ਲੌਕੀ, ਸ਼ਲਗਮ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ। ਸਟੀਲ, ਸਰਬਲੋ, ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੂੜੇ, ਸਾਈਕਲ, ਤੰਦੂਰ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, 905-840-9000। ਲਾਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਤੰਦੂਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 499 ਰਾਸਨ ਤੇ ਮਿਕਲੋਗਰਨ। ਟਿਫਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਈਵ ਆਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 905-450-6464। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਟੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 641-7-1735-1735। ਮੇਪਲ ਵਨ ਕਿਚਨ ਬਾਥ ਐਂਡ ਇੰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 173 ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਪਲ ਵਨ ਕਿਚਨ ਐਂਡ ਬਾਥ ਇੰਕ, 905-458-0075 ਤੇ ਗਿੱਲ ਹਾਊਸ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਬੇਸਮੈਂਟ, ਆਫਿਸ, ਸਪਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਗਿੱਲ ਹਾਊਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੱਕੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ 647-8-63-59-060। ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, 7550 ਕਿੰਬਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿਚ, 647-382-5500। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 905-813-1320। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਏ ਸਵੀਟ ਮੈਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਈ ਸੁੱਖਾ ਕੰਗ, 11:30 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੋਰ ਰੋਡ ਕੌਂਕੜ ਦੇ ਸੌਤ ਲੈ ਕੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਸਵੀਟ ਮੈਲ ਤੇ, ਲਾਜਵਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, 680 ਰੈਕਸਟਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹਾਈਵੇ 27, 416-679-9999 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
3: ਜੁੜਨਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਗੁਰਸਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਠਾਸ ਸੋਟਾ ਮਿੰਟੋ ਗੁਰਸਰੀਏ ਦਾ,
4: ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਠਾਸ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 25 ਮਿੰਟ ਵਿਦਆਊਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
0: ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
4: ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ?
0: ਮੈਨੂੰ
4: ਜੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ, ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ?
0: ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੁਆੜੇ ਹੱਥੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ।

0: Chernexus.
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: हम भी दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

0: सानू मंजला ना प्यार विरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

ब्रेक तो ब्रेकिंग न्यूज, तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया, गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया, मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो, मुझसे दूर रहो, मुझे माफ करो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है गॉड।

में गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है, ये देसी का मेला, कैसा रहा यकायकी, नाचो नाचो नाचो नाचो, अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक ना।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320.
2: CJMR 1320. This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
3: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल, पीआर कार्ड, कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल, विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो तां मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवन जीरो जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
4: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
5: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
6: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
8: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
9: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु, इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com।
10: पंजाबी दिल, अंग्रेजी वाइब, CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया होए, छा गया होए।
11: शादियां ब्याह वाले मौके आंदे उत्ते पता लगता नहीं सच्ची काम काज दा।
12: ओ जी, इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल वालियां दी हुंदियां तां तैयारियां दी कोई टेंशन ही नहीं।
13: इना कोल टेंट, टेबल, चेयर, एलईडी डांस फ्लोर, फ्लावर एंड डेकोरेशंस, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ मिलेगा। इना कोल छोटे वटे हरेक फंक्शन लई अट्रैक्टिव टेंट्स अवेलेबल ने।
12: बुकिंग लई कॉल करो इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल 6477080079 6477080079।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंट द्वारा पेंट करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजिब रेट अते समय सिर काम करवाउन लई अते एस्टीमेट बिलकुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-833-5960 6478335960 गिल हाउस पेंटिंग।
2: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमां वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटॉर्नीज बच्चा लई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 9052328700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
3: यह है टाटा आटो इलेक्ट्रिक का। इथे हर तरह दी कार वैन ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर अल्टरनेटर जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा आटो इलेक्ट्रिक पिछले 20 सालां तों कस्टम वुडवर्किंग दियां प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुडवर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट क्लोजेट बार टीवी यूनिट जां डॉक्टर ऑफिस डेंटल ऑफिस ऑप्टिकल स्टोर दी वुडवर्किंग दा काम अपने बजट अते समय सिर करवाना चाहुंदे हो तां चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक 173 एडवांस बुलेवार यूनिट 34 ब्रैम्पटन और का 9054580075 9054580075 मेपल वन किचन एंड बाथ इंक।
4: रियल न्यूज रियल इम्पैक्ट शोइंग यू रियल वर्ल्ड CJMR 1320 द वॉइस ऑफ द सिटी।

0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Where cultures connect, CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं, रातों का राजा मैं, हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं।

0: है मेरा सवाल किसी का उरूज।
1: हर सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर। हर सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनू रेला आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

दो जलने दो, समाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू उनकी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heart to beat.

0: your home for community. CJMR 1320.
1: राजा पास मेरे तू आजा आजा काट दे सारा गम जमाने से है मिला तुझे ताजा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

महकती है सदियां खुशबू का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है। परियों के महलों के किस्से कहानी, झीलों को जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना इधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।

जब करेगा दुआ कोई यार के लिए, खुदा भी टाल देगा। जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा। जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

छड़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: It's a GR music.
1: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
2: जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।

0: तन ते पाया कपड़ा जो भी पाड़ पाड़ के लाउना ओए मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।
2: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. The voice of the city.